व्यवसायो व्यवस्थान संस्थान स्थानदो ध्रुवः परर्दिपरमस्पष्टतुष्टपुष्टसुबेक्षणः रामो विरामो विरतो मार्गो नेयो नयो नयः वीरशक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्म

रामसहस्रेण स्तोतुमिच्छति पाण्डव सोऽहमेकेन श्लोकेन स्तुत एव न संशयः स्तुत एव न संशय ॐ नमैति व्यासोवाच वासनात् वासुदेवस्य वासितं भुवनत्रयं सर्वभूतनिवासोऽसि वास

0: Scorpions.
1: मैं सयोनी,
2: मैं खुशाली,
1: आपका हार्दिक स्वागत करते हैं हमारे शो में. वनकम
2: सारे मद्रासियों को मद्रास वीक की हार्दिक शुभकामनाएं.
1: So, आज हम बाल मजदूरी के बारे में बात करेंगे.
2: चाहे मद्रास चेन्नई हो जाए या सारी कायनात इधर से उधर हो जाए, पर आज तक बाल मजदूरी का अंत नहीं हुआ है.
1: तो हम हमारे कार्यक्रम ईश्वर का नाम लेके शुरू करेंगे.

0: धन्यवाद।
1: अब हम रक्षा को आमंत्रित करेंगे बाल मजदूरी पे एक भाषण प्रस्तुत करने के लिए।
2: मजदूरी के दल दल में फंसा बचपन। बचपन इंसान की जिंदगी का सबसे हसीन पल। न किसी बात की चिंता और न ही कोई जिम्मेदारी। बस हर समय अपनी मस्तियों में खोए रहना, खेलना कूदना और पढ़ना। लेकिन सभी का बचपन ऐसा हो यह जरूरी नहीं। बाल मजदूरी की समस्या से आप सभी अच्छी तरह से वाकिफ होंगे। आज दुनिया भर में मिलियन ऐसे बच्चे हैं जिनकी उम्र 14 वर्ष से कम है। इन बच्चों का समय स्कूल में किताबों और दोस्तों के बीच नहीं, बल्कि होटल, घर में बर्तन, झाड़ू, पोछा और औजारों के बीच बीतता है। भारत में यह स्थिति बहुत ही भयावह होती जा रही है। दुनिया में सबसे ज्यादा बाल मजदूरी भारत में ही है। इसके कारण, इस समस्या का सबसे पहला कारण है गरीबी। भारत में गरीबों की संख्या बहुत ही अधिक है। इस गरीबी के कारण माता पिता अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेजते हैं और पैसे कमाने के लिए काम पर भेजते हैं। ज्यादातर भारत में आबादी अनपढ़ की ही है। इसके कारण उन्हें पढ़ाई की महत्व नहीं मालूम होती है। दूर करने के उपाय। इस समस्या को एक ही झलक में दूर कर नहीं सकते। हमसे हर एक को बाल मजदूरी को दूर करने में अपना योगदान करना चाहिए। सबसे पहला कदम पढ़ाई है। हमें समझाना होगा कि पढ़ाई का महत्व क्या है। सरकार को भी अनेक आयोजन और संसद रखना चाहिए। एक विद्यार्थी होने के कारण हमें भी हमारे घर के पास रहने वाले बच्चों को पढ़ाना चाहिए। बाल मजदूरी एक अन्याय है, उसे दूर करना हमारा कर्तव्य है।
1: अब हम रक्षा को एक कविता प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
2: दो अलग बचपन। जहाँ दुनिया मेरे लिए बस घर से स्कूल का रास्ता था, वही एक बच्चा स्कूल जाने को बेहद तरसता था। अब अपने खिलौने तोड़ में नए खिलौने की जिद किया करता था। वही एक बच्चा अपना परिवार चलाने के लिए मिट्टी के खिलौने बनाया करता था। जहाँ अपने छोटे छोटे कामों के लिए मैं माँ पे निर्भर होता था, वही एक बच्चा दिन भर काम कर थक के रात पर रोता था। मैदान के खेल जहाँ हमें थकाते थे, उन बच्चों को उनका मालिक न जाने कितना नचाता था। आज प्रण लेते हैं बाल मजदूरी के खिलाफ उठाएंगे अपनी आवाज और कुछ ऐसे कर दिखाएंगे कि खुद ईश्वर को भी होगा हम पर नाज।
1: धन्यवाद रक्षा। अब हम ललित प्रिया को छोटी सी कहानी प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करते हैं।
3: एक छोटा सा मजदूर, करीम पाठन अनमोल द्वारा। कल शाम अचानक भेंट हुई एक छोटे से मजदूर से। मैं चौंक पड़ा जब मैंने उसको देखा। थोड़ी दूर से तन मैले कपड़े से ढका हुआ और हाथ में था एक थैला। सारे दिन का थका हुआ और था बिल्कुल अकेला। जब देखा मैंने उसको तो मैं पूछ ही बैठा उससे, तुम कौन हो मेरे बच्चे और यहाँ क्यों खड़े हो? वो बोला, किस्मत का मारा हालातों का मजबूर हूँ। सभी लोग कहते हैं मुझको मैं छोटा सा मजदूर हूँ। हालत तुम्हारे ऐसे कैसे हो हालत? तो मैं बोला, तुम बालक हो, तुम मजदूरी क्यों करते हो? हालत तुम्हारे ऐसे कैसे हो हालातों से लड़ते हो? वो बोला, बाबूजी देखो मैं लगता हूँ तुमको बालक, लेकिन तुम नहीं जानते मैं हूँ अपने घर का पालक। बाप मुझे मुआ शराबी है, घर में 10 जन खाने वाले। माँ बेचारी पेट से है, सगे नहीं घराने वाले। छोटे भाई बहन मेरे भूख से है, घर पर व्याकुल। ऐसे मैं जाता हूँ कमाने। यह सुनकर मैं चुपचाप चल पड़ा। पूरे रास्ते मैं सोचता आया कि उस छोटे से बालक की हालत क्या हो सकती है। अब वह छोटा सा बच्चा मेरे लिए बच्चा नहीं रहा। अतः हमें बाल मजदूरी रोकनी चाहिए।
1: हम साक्षी जैन को आमंत्रित करेंगे जैम रोल पुडिंग की रेसिपी बताने के लिए।
4: जैम रोल पुडिंग। तैयारी का सामान, 15 मिनट पकाने का समय, मात्रा 5 व्यक्तियों के लिए। सामग्री, एक जैम रोल, 3 टी कप मिश्रित फल चेरी बनाना, 2 पैकेट रास्पबेरी जेली, 200 ग्राम फ्रेश क्रीम, 4 टेबलस्पून पीसी हुई चीनी, 2 टी कप कस्टर्ड सॉस। बनाने के लिए रोल के समान स्लाइस काटिए। इन स्लाइसों को एक मध्यम प्रकार के प्याले की तली पर किनारे पर रखिए। जेली को 3 टी कप उबालते पानी में पिघलाइए। जब ठंडी हो जाए तो रेफ्रिजरेटर में जमाने के लिए रखिए। जब जेली जम जाए तो इसके छोटे छोटे टुकड़े काटिए। क्रीम और चीनी को फेंटिए जब तक कि वे गाढ़ी ना हो जाए। फल, कस्टर्ड सॉस, क्रीम व आधी जेली को मिलाइए और प्याले में भरिए। रेफ्रिजरेटर के फ्रीजर कंपार्टमेंट में 1.5 घंटे तक खूब ठंडा कीजिए। परोसने के लिए एक तरतरी पर उल्टिए और बाकी बची जेली व थोड़े से फल और क्रीम से सजाइए।
1: धन्यवाद साक्षी। जैसे बूंद बूंद से सागर बनता है, वैसे ही अगर हर एक इंसान बाल मजदूरी को रोकने का प्रयत्न करे तो जरूर बाल मजदूरी का अंत शीघ्र ही हो सकता है।
0: किसी भी कार्य को आरंभ करने के लिए हमें खुद शुरुआत करनी चाहिए। हम शुरू करेंगे तो संचार शुरू करेगा।
1: अब हम रक्षा, दिव्या, साक्षी, भाविका, काव्या, ललित प्रिया, ऐश्वर्या चिदम्बरम, रिया और स्पंदना का धन्यवाद करते हैं। हम MOP वैष्णव के हिंदी डिपार्टमेंट का हार्दिक शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने हमें एक मौका, एक स्टेज दिया जिसमें हम हमारे टैलेंट को प्रस्तुत कर पाए। मैं खुशाली,
0: मैं सयोनी
1: आप लोगों से विदा लेते हैं और मद्रास वीक की हार्दिक शुभकामनाएं।